0: मेलायु मायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका यो मस्तक जरुरी सूचना जुमो बेला खिमरिदे गरम ओबोतिरी जेऊ बेला सुनो फुरी कता ओचुगुरी जेऊ आउ बेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज सम्भावना ताई आउ ये जुनि प्राकृतिक सम्पदा र त खेत जस खिन्ना दे वातावरण मिले ने ल खेपा असर केने रि उमुल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज ताना दे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकेनी सुनो माखार नामे ल भे लागिने सज जिमी जिमी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिन्दगी को ठेल मेला की नाटी जन धने में खेता छिपीता उठो खोकाई
1: वन
0: जंगल सर मेरा आयुर्वेदी बानी एमएल एमए सोछामेला सुतर पोतर राई पारे हटे
1: सलाई लाई तर्सी मे सचाउने चीज राजा रेने पोल के चीज रही वन जंगल के
0: पिकनिक वन भोज बा मे सचाउसु छिन्नी मेले चाउसु सही खेनाए वन जंगल ओसो छाम्ने बारी को चुरो विधि ओरे बनाई कोबाजे
1: नाङथार नाम्लो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हुने ढालले च अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसर्गी दुए
0: गेछो छामेला खोरेल चाउसी पोरिए हैदे तरिम गाई गेजो मेके लाइजु अब नजिरे बनाए गेम याल गेजो मेके नालाए औलेम लायो के नाइए
1: वन जंगल स जुडिसी हो गेम बारी ल बाली नाली चिउला चिउली यात्रा र सताउसु छिने ने चाउसो सहिले के खेले या
0: वन जंगल मेला कि गेमाइए मेला
1: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सहज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा।

0: चिकित्सकहरूद्वारा उपचार सेवा प्रदान गरिन्छ। बाथरोग एन्ड स्किन केयर सेन्टर सुपरिजित फार्मेसी ट्राफिक चोकदेखि 100 मिटर पश्चिम उकालो तर्फ घोरा हिँडा। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 082-591-670 98-578-43123 98-478-070
1: बाथरोग एन्ड स्किन केयर सेन्टर प्राली ट्राफिक चोकदेखि 100 मिटर पश्चिम उकालो तर्फ घोरा हिँडा।

0: असर सकिए सुन नाखर नाम हे लागिने सज जिमी किमी लापर भाई सुन चाउसो खेलगेमा दुख गे जिमुगे कोठेल हे लागिना दे जन धनी मे खेतमा छिपी चाउजु हो खोकाई
1: वन
0: जंगल सर मेरा आयुर्वेदी बानी एमएल एमए छाला सुतर पोतर
1: लाइटर सियाने चीज रांगजा रामे पोल घेने चीज रे वन जंगल
0: पिकनिक वनभोज बाटो छिन्नी चाउसो सही खेना वन जंगल ओसो छाने दैके बानी को चुरो विधि ओरे नई
1: नाङथार नाम लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने होमी अनुगमन दिने व्यवस्था चाउस गिरुए
0: गेछो छामेला खोलेर चाउसी खोलिए हरिदे तरिम गाई गेजो मेके लैजु अब नजिरे बनाए गेङ एल गेजो मेके नलाए औले लायो के नाइए
1: वन जङ्गल जुडिसियो गेङ बारी ल बाली नाली कुचिला चुली यात्रा र सताउसो छिनी ने चाउसो सैलेकी खेले यहाँ
0: वन जङ्गल मेला दुखे माइए मेला
1: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सर्ज सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर गिरिए
0: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

ट्राफिक नियम को पालना गरो, सवारी दुर्घटना बाट आफू बचौ अरूलाई पनि बचाओ। मादक पदार्थ तथा लागू पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन न चलाओ। सीट क्षमता भन्दा बढी राखेर यात्रा नगरो। झुन्डिएर तथा छतमा बसी यात्रा नगरो। सवारी साधन चलाउँदा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरो। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेर मात्र सवारी साधन चलाओ।

0: मस्तक जरूरी सूचना जो बेला खेमरी गरम ओगोदरी जेव बेला सुनो भूरी कता ओचोदरी जेव आओ बेला को वन जंगल लो घे लागिने मस्त जो संभावना ताई आउ ये गिनी प्राकृतिक संपदा र सक्षेप्त जो सक्षम नारी वातावरण मिले ने लगेता असर किने री उमूल र थाउने भूछे ताने वायुमंडल लो कार्बन मस्त जो तागे बने जलवायु परिवर्तन लो असर सकिन सुनो नाखा नामे लो घे लागिने सज जिमी गिनी लापरवाही सुनो चाउसो खेलगेमा दुख जिंदगी को ठेल मिला कि नाटी जन धनी में खेता छिपी ताऊ खोकाई
1: बन
0: जंगल सर मेरा आइडेन्टिटी एमएल एमए सोछामेला दिउसोतर पोतरले पार्दगी रहतै
1: सलाई लाइटर्सी आउला ले सचाउने चीज राले जाबाङजा र यामादेने पोलके नै या पिटौ चीज र रहिदे बन जंगल याले के भाबाय
0: पिकनिक बन भोजबाको ने सचाउसु छिन्ने मेले चाउसु सहिदेकी खेनाले बन जंगल ले ओसो छाम्ने दैके बारीको चुरो विधि ओरे बनै खोबाजे
1: नान्थर नाम्लो लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बनी हो नि हालले चाहिँ अनुगमन दिने व्यवस्था चाउसो गिरिए
0: गेछो छानेला खोरेल चाउसी खोरिए होलिदे तरिन गाई गेजो निकेलाई जु अब नजिरे बनाए गेम येलो गेजो निके नलाए औले नलाए के नाइजे
1: वन जंगल छ जुडिसी हो गेम बारी ल पानी नाली कुचुला चुली झ्याप्रा रस्तो चाउसो छिनी ने चाउसो सहिदे के खेले
0: वन जंगल

0: विषादी को असर न्यूनीकरण का उपाय बारे महत्वपूर्ण जानकारी। अर्गानिक कृषि उत्पादन प्रवर्धन करौं। स्थानीय जड़ीबुटी तितेपाती नीम टिमोर बोझो खुर्सानी आदि तैयार पारिएको झोलमोल प्रयोग करी शत्रु जीवन नष्ट करौं।
1: यदि तरकारी बाली में विषादी को प्रयोग गर्नै पर्ने अवस्था भएमा कृषि प्राविधिकहरूको सिफारिश अनुसार को विषादी खरीद गरौं।
0: विषादी छर्कदा व्यक्तिगत सुरक्षा का सामान पीपीई प्रयोग गरेर मात्र काम गरौं।
1: तरकारी फलफूल में विषादी प्रयोग गरिसकेपछि तोकेको निश्चित समय पछि मात्र उपभोग गरौ वा बजारसम्म पुर्याऊ।
0: बजारबाट किनेर ल्याएका तरकारीहरू राम्रोसँग सफा गरौ। बाहिरको पात बोक्रा फ्याकेर मात्र खाने गरौ।
1: अनुरोधक स्वास्थ्य कार्यालय रोल्पा।

0: कहासंचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: रेडियो कहासंचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: जीवन गंगा।